0: गुड मॉर्निंग ऋषि, गुड मॉर्निंग स्टेफन। मेरा नाम रिश्मा है, क्या नाम है?
1: Pump and vibe, Stefan and Rishi, you know we do.